0: 45 a.m. This time check.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6
2: सेप्टेम्बर तारीख मुताबिक रबी सानी महीने की 10 तारीख है 1448 जी सन साईं मुंहिंजा अॼोके प्रोग्राम रोशन सुबुह जो अवां खे सिटरा ॿुधाईंदो हलां त अॼोके प्रोग्राम में सवाल बि ज़रूरु हूंदो ऐं आरफाणा कलाम बि हूंदा चूंड मौसीक़ी बि हूंदी ऐं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते अवां सां ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु कंदासीं ऐं साईं मुंहिंजा हर रोज़ सुबुह जो सिज भरण सां गॾो गॾु तव्हांजे नए ॾींहं जो आगाज़ बि थी वञे थो ऐं केतिरा ई नवां कम ऐं नयूं ज़िमेवारियूं अव्हां जे ध्यान जो मुंतज़िर बि हूंदियूं आहिनि ऐं वरी ॾींहं जे कामयाबी ऐं ख़ुशगवार जो जेको इनसार वॾी हद ताईं तव्हां जे रवैये ऐं तर्ज़ ते मुश्तमिल हूंदो आहे उन ॻाल्हि जी ॼाण रखणु ज़रूरी आहे त तव्हां ॾींहं जो स्त्रीअ जे कमनि कारनि करण लाइ तव्हां मुस्कराईंदे उथो था या तव्हांखे मजबूरीअ में उथण मां जाॻे ख़ुशीअ सां ग़लति ॻाल्हि आहे असां कयूं त सुबुह ई उथूं फजर चऊं था फजर जो निमाज़ पढ़ी ऐं सिर्फ़ दौर करे कम कार सां त उन में अलाह बिराज़ी ऐं तव्हांजे रोज़ी रिज़्क में बरकत ऐं तव्हांजी महिनत में आसानी ऐं तव्हां कोशिश कयो पंहिंजी महिनत पंहिंजी ड्यूटी पंहिंजो कमकार प्राइवेट हुजे या सरकारी हुजे सुबुह सां जेको आहे सो अलाह खे यादि करणु तमामु बहितर आहे ऐं अलाह खे यादि करे पंहिंजे कारोबार पंहिंजे बिज़नेस पंहिंजी महिनत मज़ूरी ते वञणु तमामु बहितर आहे।

साईं, मुंहिंजा चवंदा आहिनि त परहेज़ इलाज खां बहितर आहे। उन में को शक बि न आहे। असां पंहिंजे माहौल ॾे नज़र करे ॾिसंदासीं त असां केतिरा ई या वरी बेसमझ आहियूं। कंहिंखे रुगो का तकलीफ़ थिए थी बीमारी जे हवाले सां त असां रुगो डॉक्टरनि जा ॾिनल नुस्ख़ा वापरण में पूरा हूंदा आहियूं ऐं असांजो रुख जेको आहे उहो स्टोरनि तरफ़ हूंदो आहे। कंहिं डॉक्टर सां कोन मुलाक़ात कंदा आहियूं। अहिड़ी तरह वरी असां सां ज़रात में बि साॻियो ई मसइलो। सलण को जीत ज़मीन में ॾिसूं, सिधो वेंदासीं कंहिं दुकान ते त भाउ असांखे हिन जीत मार का दवा ॾे, सुठी ॾे। पोइ कणिक जो फसल हुजे या सारियुनि जो फसल हुजे ऐं पिया असां पंहिंजो नुस्ख़ा इस्तेमालु कंदासीं। पर साईं जा ॾाहा थियो, ईअं न कयो। कंहिं जेकॾहिं ज़मीन जो को मसइलो आहे, का हुन खे तकलीफ़ आहे, का हुन खे बीमारी आहे, त कंहिं ज़रई महिर सां ज़रूरु राब्तो करणु खपे। जेकॾहिं इंसान पाण बीमार आहे, का तकलीफ़ आहे, त डॉक्टर खे ॾेखारणु तमामु ज़रूरी आहे। छो त जेको इन्वेस्टिगेशन कंदो आहे मर्ज़ जी, उहो बहितर हूंदो आहे। ऐं जेका परफेक्ट उहो मर्ज़ मिली वेंदो आहे त हुन जी हिकड़ी टेबलेट या को सीरप रखंदो आहे, जंहिंमें इलाज हूअं बि सुनत आहे। दवा त इंसान खाए थो पर शफ़ा ॾियण वारो अलाव आहे। त असां वतूं था हुतां हुतां जा धिका खाईंदा ऐं खाली स्टोर तां दवा वठी ऐं पाण इस्तेमालु कयूं था। ईअं न कयो, कोशिशि कयो त डॉक्टर खे ॾेखारियो त बहितर आहे। ऐं दवा जो असरु तॾहिं थींदो जॾहिं पंहिंजो मर्ज़ लभंदो।

जी आसमिन, प्रोग्राम रोशन सुबह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, ऐं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक जारी रहंदी। त हिन वक़्तु असां हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं, असां सां गॾु रहिजो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी सिम जा प्रोग्राम रोशन सबवा बुध पया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता जेमे सखर लाडकाणा मीरपुर खास मोरो मेहरापुर मटियारी मातली ए सकरण स्टेशन ता ए मां जो साथी अवां जो आर जे अवां जी मेज़बान नेमत अल्लाह जुणे जो सिम जा गाल कंदा से पुरण यादगिरन जी चवंदा आहिनि त अॼु खां पुराणो वक़्तु तमामु बहितर हुयो उहो छो बहितर हुयो कीअं हो त पाण जॾहिं जोगिन जीअं रोलाक हुयासीं केतिरो विशाल में त हाणे प्यार जूं मिड़ई मुंदूं तूं वेबसाइट ते विञाए छॾियूं आहिनि ऐं पंहिंजे इश्क जूं शर्मीलियूं धुनूं जेकी तोखे सुरंदे खे ॿुधाइणियूं हुयूं से तूं इंटरनेट जे बेहिसाब ऐं बेहिजाब प्यानो ते ॻाए छॾियूं ऐं ॿुधाए छॾियूं कंप्यूटर जे बे अंत सागर जे पाताल में लहंदे लहंदे तोखे चांडरोकिन जी दरिया में तरण मुखड़ी जी महक खे मारण पोपटनि खे पाबूअ मां ॾिसण ऐं खुली हवा में साह खण विसरी वियो आहे। बहरहाल चवण जो मतिलब इहो त दौर सां गॾु सभु कुझु आहिस्ते आहिस्ते बदिलजी वियो आहे। ज़माने सां गॾु ज़माने जा तौर तरीक़ा

जूं तकाज़ाऊं ऐं मयार जा मापा बि साॻिया नाहिनि रहिया। ज़मानो अलाए शो शॉर्टकट ऐं रीमिक्स जे रंगनि जो दीवानो बणिजी वियो आहे ऐं सेम जा अहसासनि जे अखियुनि आॾो उहा हिकु अहिड़ी अलमनाक ऐं भयानक हक़ीक़त आहे जंहिंखे असां जहिड़ा कंहिं न कम जा चरिया माण्हू ऐं अज़ीम अलमियो चवनि था। हाणे इंतज़ार में बेक़रारी आहे, छो बेक़रारी आहे त इंसान खे पुराणियूं यादगीरूं अचनि थियूं ऐं अॼोको सिस्टम जीअं बि आहे, इंटरनेट जो आहे, गूगल जो आहे, बहरहाल पुराणो वक़्तु पुराणो उहे यादगीरूं आहिनि, उहे माण्हू संभाले रखे त ज़रूर कमु ईंदियूं।

Dicemos ya más que जिसमें प्रोग्राम रोशन में इंतजार हों ओसड़ हों सवाल जो असो जो अज सवाल है तमाम आसान है असाजा जे बाहर खास कर बहराड़ी में रहन था असा उन इो पुछंदे तवाजे इलाके में कड़ा फसल इन वक्त लही चुका कड़ा फसल अवा वट तैयार बीठा या उ कुछ टाइम में फसल तैयार थी वा त ई ना त हर एक इलाके में फसल पांजो पांजो आए तवां दिसो त असांजो पांजो जेको सखर डिवीजन आहे खास करे पांजो लाड़काउ डिवीजन जेका आहे उन में कश्मोर जिलो आहे जेकबा जिलो आहे शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर डिस्ट्रिक्ट आहे उन जा फसल हिकड़ा पांजा पांजा आहिनि ऐं जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त पांजो सखर डिवीजन में घोटकी जिलो आहे ऐं सखर जिलो आहे खैरपुर जिलो आहे त उन जा इलाइक़े में पंहिंजा पंहिंजा फसल आहिनि ख़ासि करे जेको दरिया जो पंहिंजो परियों पासो आहे लाड़काणे खां उन जा फसल पंहिंजा आहिनि जंहिंमें कंडियारो अची थो वञे नौशरो फेरोज़ मोरो अची थो वञे सकरण अची थो वञे वेंदे हाला हैदराबाद ताईं उते फसल पंहिंजा पंहिंजा आहिनि ऐं दादू ज़िलो जेकॾहिं सेवण पंहिंजो जामशोरो ज़िलो ॾिसूं त असांजो काशी जो इलाइक़ो आहे जेकॾहिं कंबर खां परियां ॾिसंदासीं बलोचिस्तान जो इलाइक़ो लॻे थो कंबर ज़िले खां दादू ज़िले खां जामशोर ज़िले खां त इहो जाबलू इलाइक़ो आहे जाबलू खां नए बि वहंदी आहे त उते बरसाति वारो सिलसिलो हूंदो आहे जिते बरसाति वारो सिलसिलो हूंदो आहे उते फसल हिकड़ा अलॻि हूंदा आहिनि मुनफ़रद हूंदा आहिनि जीअं असांजो थर जो इलाइक़ो आहे मिठी मीरपुर ख़ासि जो इलाइक़ो आहे त उते बि वठे थी आहे यानि मींहं वसण खां बाद में कुझु अहिड़ा फसल कुदरती तयार थींदा आहिनि कुझु फसल वरी पोखिया वेंदा आहिनि असांखे मिठी वारा ज़रूर ॿुधाईंदा मातली वारा ज़रूर ॿुधाईंदा मीरपुर ख़ासि वारा ज़रूर ॿुधाईंदा त असांजे इलाइक़े में कहिड़ा फसल तयार आहिनि कहिड़ा फसल जेको आहे सो लही चुका आहिनि ऐं अहिड़े हिसाब सां पंहिंजो हैदराबाद आहे ऐं असांजो जेके बि इलाइक़ा आहिनि असांखे तव्हां ज़रूर ॿुधाईंदव पंहिंजो इनबॉक्स में मैसेज इनबॉक्स में मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे तव्हां जेको आहे सो इनबॉक्स में ईंदव ऐं राइट ऑप्शन में अची करे तव्हां एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव ऐं तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो पंहिंजे इलाइक़े जे फसल जो नालो लिखी करे तव्हां असां सेंड कंदव 888 ते जेके दोस्त असांजो फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधनि पिया असां हुन खे गुज़ारिश कंदासीं त असांजी फेसबुक जी आई डी आहे GFM88 असांजी आई डी आहे असांजो पेज आहे फेसबुक जो तव्हां उन ते बि पंहिंजो सवाल जेको असां कयो आहे पर सवाल नाहे असां अवां खां मालूमात वठण पिया चाहियूं त कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में कहिड़ा कहिड़ा फसल आहिनि तव्हां असांजे फेसबुक ते बि मोकिले सघो था तव्हां असांखे लाइव कॉल जे ज़रिए बि असांखे ॿुधाए सघो था ऐं इन में का बि जेको आहे सो को धोको नाहे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में जेकॾहिं हिकिड़ा शहर में माण्हू रहनि था त उन जूं ज़मीनूं उन जूं बनियूं उन जा फसल बहराड़े में पंहिंजे पंहिंजे ॻोठनि में ज़रूरु आहिनि त असांजा जेके ज़मीनदार भाइर आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजी फसल जी तमामु सुठी ॼाण हूंदी आहे ऐं ख़ासि करे जेको असांजो आबादगार आहे हारी आहे कुड़मी आहे उहो त असांजे ज़मीननि जो फसल जो डॉक्टर आहे ऐं उन खे वधीक ॼाण हूंदी आहे त असांजे इलाइक़े में हिन मौसम में हिन सीज़न में कहिड़ो फसल थिए थो अवां असांखे लाइव कॉल ते ॿुधाए सघो था असांजो नंबर आहे 0333221322888

0: से सजी फिल्म की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM 88 की आवाज।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Bio.
6: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
7: Brought to you by
8: Sona Yulia Granular.
9: Continued building a vast missile and drone stockpile that threaten the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
10: ईरान के तबाह करण आए या उनके बेअरसाह करण जो मौके दिनो आए जल्द वडे फैसले जो ऐलान करण वारो आया उम्मीद आए विच मुद्दे वारे चुंडन बाद ईरान सामो आए दो थी विंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो गयल को मुझे जनरल असेंबली के खिताब डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान विच ओभर में बदमाश बनल हो हाँ बदमाशी करे न सकंदो ईरान सा मुआदो करण चाहो पर तेहरान इनकार उम्मीद आए विच मिड टर्म चूंडन बाद ईरान सा मुआदो थी विंदो हाँ जेन में सिर्फ एक ही गाल आए तो तेहरान का भी बस सूरत मेटी में हथियार न तो रखी सके ईरान जे दहशतगर रजीम खराब वर्ताव जो मुजाहरो करे रही आए खराब वर्ताव ईरान जी ताकतवर हुजण जी अलामत न पर कमजोर हुजण जी निशानी आए ईरानी मशीहत तबाह थी चुकी महंगाई 300 सैकड़ो वाह थी वही आए

वजीर आजम शहबाज शरीफ के गजल कौमुन के जनरल असेंबली के 81 इजलास में शिरकत इफ्ताही सेशन दौरान आलमी अगवाण से गैर रस्मी मुलाकातू वजीर आजम वली अहद शेख सभा विच में मुलाकात दौरान बतरफ लागापन मुख्तलिफ शोबन में सरकार के हथी जन लाइक आलमी सूरत हाल से गाल केन्या के सदर से मुलाकात दौरान बिन्हीं मुल्क के लागापन की मौजूदा सूरत हाल मुस्बत रुख में अगते होने इतमान जो इजहार शहबाज शरीफ सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद केन्या के सदर ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चन स्टाकर से भी धारदार गैर रस्मी मुलाकातू क्यों इलाक आलमी मामलों के ख्याल की डे वठ।

पाकिस्तान पारां अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते सख़्त गण ते ज़ाहिर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़दार चयो आहे त पाकिस्तान परियों मुल्क हो जंहिं अफ़गान ॿाहिरां लाइ पंहिंजा दरवाज़ा खोलिया। अफ़गानिस्तान में जटादार अमन सलामती ऐं इस्तक़ाम लाइ लाॻीतो ध्यानु ज़रूरी आहे। तालिबान मां उमेद हुई त उहे पंहिंजे वाइदनि जी पासदारी कंदा। न्यूयॉर्क में ओ आई सी जे अफ़गानिस्तान बाबति राबता ग्रुप खे ख़िताब कंदे इसहाक़दार चयो त अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जी गणती आहे। गुज़िरियल हफ़्ते क्वाड में अफ़गाती धमाके में 24 पाकिस्तानी शहीद थिया। तालिबान दहशतगर्दी जो मुकमल ख़ात्मो यकीनी बणाई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GFM 88 की आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

असांजो प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां सां गॾु गॾु आहियूं ऐं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। असीं अवां खे सवाल बि नोट करायो आहे पर ॻाल्हि कंदासीं प्यार जे जज़्बे जी। त साईं मुंहिंजा प्यार जज़्बनि जो समुंड आहे। दुनिया में जिन बि माण्हुनि प्यार कयो आहे, चाहे शायर हुजनि या फिलासफर, तन सभिनी जा जेकॾहिं शुरूआती प्रेम कठा करे पढ़िया वञनि त उन्हनि मां हिकु ई हक़ीक़त चमकंदे नज़र ईंदी। प्रेमियुनि जी शुरूआत प्यार जे जज़्बनि ऐं ख़्यालनि जी हिकु जहिड़ाई। हर कंहिं जी बयानी तिर्ज़ पंहिंजी हूंदी। हर कंहिं ॿोलीअ में ॿोलीअ जो सिंगार फहिला बि निरालो हूंदो, पर जेका आहे रिट आहे सभिनी जी साॻी हूंदी। त तूं न आहे त निंड कान्हे, ऐं तो बिना ईअं आहियां जीअं चंड बिना राति। मां तोखां थो सघां प्यार जो जज़्बो धरतीअ जे हिकु छेड़े खाड़े ताईं साॻियो ई हूंदो आहे। बहरहाल लफ़्ज़ साॻिया साॻिया हूंदा आहिनि पर मट हूंदा आहिनि। जेकॾहिं का दवाउनि जी कंपनी हिकड़ी हूंदी आहे त हुन में नाला मट हूंदा आहिनि। बहरहाल प्यार जज़्बो साॻियो हूंदो आहे जेको समुंड वांगुरु हूंदो आहे।

छह नौ सभी असां अॼु सवाल न आहे त असां अहिड़नि दोस्तनि खे बि गुज़ारिश कंदासीं जेके असांजे काशे जे इलाइक़े में आहिनि, यानी जाबलू इलाइक़े में आहिनि। असां हुन खे बि गुज़ारिश कंदासीं त असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो ऐं कॉल करे मैसेज करे असांखे ज़रूर नोट करायो त अव्हां जे इलाइक़े में कहिड़ा फसलनि जेके बरसाति ते थींदा आहिनि या जेकॾहिं का पाणी जी सहूलियत अव्हां त अव्हां हिन वक़्तु कहिड़ा फसल असां अव्हां जे इलाइक़े में मौसम जे हवाले सां थियनि पिया, थर जे इलाइक़े में हिन वक़्तु कहिड़ा फसल तयार आहिनि, लही चुका आहिनि ऐं पंहिंजो लाड़ आहे, उत्तर आहे, उत्तर जे इलाइक़े में कहिड़ा फसल आहिनि ऐं दरियाई यानी कचो जेको आहे कचे जे इलाइक़े में कहिड़ा फसल तयार आहिनि अव्हां असांखे ज़रूर ॿुधायो। ऐं मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, तव्हां उते ॻोठ नालो ऐं पंहिंजे इलाइक़े जे फसल जो नालो तव्हां असां ताईं मोकिले सघो था 888-1 ते। GFM88 जी आईडी आहे, फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि असां ॾे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु फसल जो इलाइक़े जो जेको फसल आहे तव्हां लिखी असां ॾे मोकिले सघो था ऐं असां ॾे कॉल करे बि मालूमात ॾेई सघो था। असांजो नंबर आहे 0332231322888।

0: हक सच जो आवाज की मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधंदा रहो
1: धर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रमशी नुपदी वजह टकोलो जवा द पोली जकच

अजी समय ने कुछ दोस्तन असा प्रोग्राम में तवन कयो याने कुछ मालूम दिनी अवां दोस्तन जा कुछ नाला भी जरूर खणंदासी असा अवां के यो बुधाइंदा हलांदासी त जेका हिन वक्त हीअ सीज़न आहे जेका हीअ मौसम आहे त असांजे ख़ासि करे सिंध जे इलाइक़े में कहिड़ा कहिड़ा फसल तयार थियनि पिया या तयार थी चुका आहिनि ऐं कुझु मार्केट में पहुची चुका आहिनि त असां अवां ताईं कुझु मालूमात ॾींदासीं जेके असांखे दोस्तनि मालूमात ॾिनी आहे त असां अवां सां इहा ॻाल्हि कंदासीं जेको असांजो काशे जो इलाइक़ो आहे यानी जाबलू इलाइक़ो ऐं हिन जे वट में जेको पाणी हूंदो आहे नए जो ऐं डंडू तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि वेंदे कंबर डिस्ट्रिक्ट खां बलोचिस्तान खां वेंदे दादू ज़िलो ऐं जामशोर ज़िले ताईं जेके असांजो जाबलू इलाइक़ो आहे त उते फसल हिन वक़्त या सियारे जे मौसम में त सब्ज़ियूं तक़रीबन सभु थींदियूं आहिनि तमामु घणियूं थींदियूं आहिनि पर हिन वक़्त जेके असांजे इन खे बि असां फसल चई सघूं था त जेके डंडू आहिनि तलाव आहिनि खॾूं आहिनि त उहे हिन में मच्छी तमामु घणी जेको आहे सो पंहिंजो मरंदी आहे ऐं मच्छीअ जेको कारोबार आहे तमामु तमामु घणो हूंदो आहे हिन इलाइक़े में जेको पूरी सिंध ताईं पहुचाइनि था ख़ासि करे लाड़काणो ज़िलो आहे हुन में कश्मोर ज़िलो आहे ऐं कंबर ज़िलो इन में तमामु मच्छी जा घणा जेके तलाव हूंदा आहिनि डंडू हूंदियूं आहिनि खॾूं हूंदियूं आहिनि ऐं सियारे जे टाइम में वरी हुते उन्हनि डंडुनि में इन्हनि खॾुनि में उन इलाइक़नि में वरी परदेसी पखी बि ज़रूरु ईंदा आहिनि जेके माण्हू शौक़ सां खाईंदा आहिनि ऐं लाड़काणे ज़िले में जेको ॿुधायो वञे थो त सारियुनि जो फसल पंहिंजो हिन वक़्तु बीठो आहे कुझु अञा तयारु न थियो आहे पर तयारी में शुरू आहे ऐं कुझु बेह जो फसल हूंदो आहे जेके बेह सब्ज़ी तौरु इस्तेमाल थींदा आहिनि खाधा वेंदा आहिनि ऐं लाड़काणे डिवीज़न में मकई बि आहे ऐं उन जा जेको आहे सो काफ़ी जुअर बि थींदी आहे काफ़ी अहिड़ा जेके फसल आहिनि तयारु थियनि पिया ऐं कुझु जेको सखर डिवीज़न आहे जंहिंमें वाउण थियनि पिया कमन थिए पियो केला ख़ासि करे असांजो खैरपुर ज़िलो जेको आहे ऐं जुअर थिए पई कचे जे इलाइक़े में तिर थियनि पिया ऐं असांजो थर

ऐं सराई मोहम्मद ना फतेह मोहम्मद कनासरो उन बि तमामु सुठी मालूम अदनी पंहिंजे इलाइक़े जे फसल जे हवाले सां. उन सां गॾु आहिनि सैद अहमद शाह ऐं फराज़ अहमद कनासरो, फारूक अहमद ऐं बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो, ऐं ॻोठ कंगन खां नादर अली कंगो, गुलाब खान कुंभर, गुलाम रसूल ऐं शोएब कुंभर, अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ास खां. भाउ बि तमामु सुठी मालूम अदनी फसलनि जे हवाले सां. ऐं ॻोठ लाल मोहम्मद मरी खां तालिब हुसैन मरी बि काल कई, भाउ जी वॾी महिरबानी. नूर सन तुनियो बदीन खां, मोहम्मद खान कुंभार हाले पोटा स्टाप मीरपुर ख़ास खां, ऐं नज़ीर खोसो सुबतपुर बलोचिस्तान खां, बरकत जमाली बलोच सुबाबाद बलोचिस्तान खां, भाउ जी वॾी महिरबानी. सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में तवन कयो ऐं असां सां गॾु हुया ऐं हिकड़ो ख़ूबसूरत गॾिजी पियो.

जी हाँ सुबह शमन अली मीरा लीजिए इन कलामत प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पुजान की हयाती भी खैर इंशाल्लाह वहां से मुलाकात जरूर थी तेसी तीन मेजबान नेमतुल्लाह जुणे जो डींदा इजाजत अल्लाह ने कहा।

0: तहजीब आज धर
1: की फजाओं में रची बसी GFM 88 की आवाज़।
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
3: It's 11 AM. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin to raw. Ishnal Pakistan.
5: Network पर
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: लाड़पाड़े में हथियारबंदन की कार से फायरिंग पी पुट समेत पंज जणा कतल। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे कतल कयो। मकतूल के वारसन जो चवण है त असो पेंदे ही बिरादरी के मानू सा पुरानो जमीनी तकरार है। उन्होंने असाजे चार जणन के कतल कयो है। इंसाफ कयो वे।

न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात। पोलियो जे खात्मे माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल ख़ात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरितो। बिल गेट्स वज़ीर-ए-आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई। भारत वलारियल कश्मीर में मज़हबी सुञाणप खे नुक़सान रसाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। नाले मातर छापनि जे आड़ में मासूम कश्मीरियुनि जो क़त्लेआम थी रहियो आहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो कश्मीर बाबति OIC जे राबता ग्रुप जे इजलास खे ख़िताब। इसहाक़ डार चयो त वलारियल कश्मीर में साफ़िन ऐं नौजवाननि खे निशानो बणायो पियो वञे। वलारियल कश्मीर में हुरियत अॻवाणनि समेत बि सियासी क़यादत नज़रबंद आहे। विच ओभर मां जंग जे ख़ात्मे जी उमीद। गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली इजलास दौरान ईरान ऐं अमरीकी वफ़दनि जे विच में टे कलाक डिघी मुलाक़ात। ईरान अब्राहिम हर्मुज़ खोलण लाइ टे शर्त रखी छॾिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़ी जे अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे सां मुलाक़ात थी आहे। मुलाक़ात सुठी रही। जल्द ई ईराननि सां हिकु ॿी मुलाक़ात तय आहे। ईरान जे साम्हूं ॿ दग आहिनि जिन मां हिकु इंतिही ख़राब आहे। ईरान जे मुफ़ाद में आहे त उहो कंहिं मुआहिदे ते पहुचे। ईरानी मीडिया मूजिबि अमेरिकी दरख़्वास्त ते वफ़दनि में मुलाक़ात थी। अब्बास राख़ी अपना हर्मुज़ खोलण बाबति शर्त अमेरिकी नुमाइंदे आॾो रखी छॾिया। ईरानी शर्तनि में अमेरिकी नाकाबंदी ख़त्म करण, मंझंदि असासा बहाल करण ऐं समूरनि

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: हर बादम एक वधनता पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सगे थो इन्हीं करे दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था बाबन के

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के होस्ट भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: Express PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Sunenge FM KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yulia Granular. Mittiye jo

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: काश हमारे पास वैसे गाड़ी होती चम चमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: This program is brought to you by
3: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6, Sindh Jo Awaaz.
7: O pita ja pitai, pita te vasai noor mujho to.
6: Sindh Jo Awaaz, budhanda raho.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: में हथियारबंदनि जी कार ते फायरिंग ॿिनि भाउरनि सूधो चार ॼणा क़तल। लाहौरी बाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि कार ते फायरिंग करे ज़मीनी तकरार सां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो। पुलिस मूजिब फायरिंग में अलावर आयो आहे संदसि भाउ मंसूर कोकर अली शेर कोकर ऐं कार ड्राइवर मारिजी विया आहिनि। वासियुनि जो चवणु आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हू ज़मीनी तकरार सां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो आहे। एसएसपी लाकाणे जो चवणु आहे त ॿई धुरियूं हिक पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर सैद बिरादरी शाह पारां वाके जो नोटिस आहे जी सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पारां वलारियल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि जी मज़म्मत। इसहाक डार चयो आहे त वलारियल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे। आर्मी बिरादरी ऐं सलामती काउंसिल कश्मीरनि सां कयल वाइदा पूरा करे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दनि जे ग्रुपनि ते ॻणती आहे। अफ़ग़ान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ दहशतगर्दीअ लाइ इस्तेमाल न थियणु ॾिनी वेंदी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन रितुल फितना टे तहत जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जे तुर्बत में ऑपरेशन दौरान फितना हिन्दुस्तान जा ब दहशतगर्द मारिजी विया। फरार थियल दहशतगर्दनि जी ॻोल्हा सर्च ऑपरेशन तेज़। पाक फौज क्रोम सेक्टर मां फितना ख़ारिजी मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब नाकामी सबब अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो। पाकिस्तान सऊदी अरब सां ख़ुदमुख़्तियारी सलामती ऐं मुक़दस हंधनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जे क़ौमी ॾींहं जे मौक़े ते चयो त हुसैन जे मके ते हमले जी मज़म्मत कयूं था। हुरमन शरीफ़ जी सलामतीअ खे को बि ख़तरो समूरी दुनिया जे मुस्लमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसाए थो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो। छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6। कुछ नया प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी, और बातें भी जनाब इस तरह से की जाएंगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि मार्केट में आप लोगों के लिए अब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इन हो चुके हैं। क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि भाई आप लोगों के जहनों में ये चीज तो जरूर बिठा देगी कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती के लिए है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए भी है, और आपके चेहरे को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल और पुरकशिश बनाने के लिए भी है। सो जनाब जब भी खूबसूरती की बात आए और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का नाम ना आए तो ये तो भाई फेयर नहीं होगा। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो भाई ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होंगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगा, और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ खूबसूरती की बातें की जाएगी, यानी कि खूबसूरती की दुनिया में आप लोगों को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। हाँ जी, आपकी मोहब्बत और समात हो चाहतूंगा बेहद वाला शुक्रिया, और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में, आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे जनाब, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा ब्यूटीफुल बनाएंगे कि फिर आप कहेंगे कि भाई किसी और प्रोडक्ट पे तो हमारा दिल ही नहीं लगता, क्योंकि हमारा दिल तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर गए हैं। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्या ही मैं बात बताऊं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह से तैयार किए गए हैं कि आप लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करना बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही काम है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी, और पूरे प्रोग्राम में अगर बात की जाए तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ होगा जनाब ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक, पूरे 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे जनाब, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी खूबसूरती के राजों के साथ। ओके जी, तो जरा आप अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत हो, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है। हाँ जी, पूरे 2 घंटे, और इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ जो हम जिक्र करेंगे वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होने वाला है, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए शामिल है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी सोप। ये 2 प्रोडक्ट्स अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश का यूज करने वाले हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए कौन सी सी बातें हैं जो कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई जब तक आप चीजों के बारे में ढूंढ नहीं लेते उन तमाम चीजों के बारे में जो कि भाई आप लोगों के चेहरे के लिए सही साबित होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाई अपने चेहरे से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें लगा रहे होते हैं, यूज करे होते हैं, जिनका उन्हें असर तो नहीं मिल रहा होता, लेकिन उल्टा उनके चेहरे पर जो है ना वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे की खूबसूरती में जो है ना वो इजाफा होता रहे और हमारे चेहरे की जो खूबसूरती है वो सिर्फ बढ़ती रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स

फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। बिल्कुल जी, क्या बात है, क्या बात है। असली गिलोर हर दिन का शो अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आपको मिलेगी वो खूबसूरती जो कि आप हासिल करना चाहते हैं? थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी होती है जनाब। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज तो करना ही पड़ेगा। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए क्या ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब, जिनमें डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है। ओके जी, तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं मुझे जल्दी से बताइएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, ये सरा सबसे पहले आप लोगों को बता दें। और साथ ही साथ जो चीज सबसे ज्यादा बताने वाली वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाला मुल्क कौन सा है। हाँ जी, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो पी जाती है, जो टी लवर्स हैं क्या वो जानते हैं कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो है वो कौन से मुल्क में पी जाती है? और इसका जवाब अगर आप मुझे देना चाहें तो हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनिए जनाब। और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। और आइए हमारे पेज पर, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, ये तीनों काम कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ साथ बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा ही सुना और हमारी प्रोग्राम की रौनकें तो सही जानते हैं, आप लोगों की वजह से होते हैं। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में रौनकें बढ़ाइए और अपने होने का एहसास दिलाइए और मुझे बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन से मुल्क में पी जाती है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं और वहां से मालूमात लेते हैं कि भाई जान यहाँ पर बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि कल ही बिल्कुल ये बात हुई थी कि भाई अगर आप जाते ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर तो वहां पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अंदाज जो होता है ना वो अरग पकड़ा देता है और वो कह देता है कि भाई ये हाँ ये लगाइए। क्योंकि हमारे कुछ जो लिसनर्स ना वो बड़े मासूम है, यानी कि वो गोठाना माण्हू आए तो उन्हनि खे अगर इन चीज जे बारे में खबर ना है त डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहिड़ी क्रीम आहे या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बी ते कहिड़ो फोटो लॻियल आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डबी जो कलर कहिड़ो आहे, अगर ये चीजूं तव्हांखे ख़बर न आहिनि त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां स्कीम जो हिसो बणजी सघो था ऐं तव्हांखे बि ठगियो वेंदो ऐं तव्हांखे बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे नाले सां काई बि क्रीम ॾेई छॾींदो दुकानदार। त इन्हनि चीजुनि खां अगरि तव्हां बचण चाहियो था, तव्हां सही प्रोडक्ट परचेस करण चाहियो था त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो ऐं पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे न सभु चीजूं ॿुधाईंदमि त तव्हां कहिड़ियूं कहिड़ियूं चीजूं फॉलो करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे परचेस करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे कहिड़ा रिज़ल्ट मिली सघनि था। सो इहे कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे लाइ ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ऐं तव्हां ॼाणो त ॾाढो बहितर हूंदो आहे, तव्हांखे आसानी थी वेंदी आहे। सो बिल्कुलु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया कोन, मूंखे ॿुधाईंदा हलो। ऐं तव्हां अगरि इस्तेमाल करण चाहियो था त तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो। उन खां अलावा अगरि नंबर्स तव्हांखे ॿुधाया वञनि प्रोग्राम जे अंदरि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो त नंबर तव्हां लाज़मी डायल कयो। नंबर ते तव्हां राबितो करे सघो था, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो, भाई साहब खे ॿुधायो, तारिक भाई भाई तव्हां जेको आहे कॉल अटेंड कंदो ऐं तारिक भाई खे ॿुधायो त बाबा असां फलाणी जॻह तां प्रोग्राम ॿुधूं था ऐं किथे किथे तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वञे त हू तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए छॾींदा। ठीकु हो गया, और कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ये आसानियां आप लोगों के लिए हमने तो कर दी है, लेकिन अब थोड़ी सी आसानियां हमारे लिए भी कर दीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और साथ साथ हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। नजीर खोसो भाई हमें बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं, लिखते हैं कि नादान इंसान 100 साल जिंदगी के लिए जी ले लेकिन लगन से मेहनत करता है, मगर हजारों साल कब्र में पड़ता है हमेशा की आखिरत, मगर कोई फिक्र नहीं उसे। यह गाल तो बिल्कुल भली करे चली आए। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम आरजे, आपकी अभी सर मॉर्निंग हुई है।

0: ग्रूमिंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: नहीं है क्या?
1: अभी बुधो प्यारी 1.0
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बार चाहो जब कतरा जरूर प्यारे छो ते ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: अभी जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज उदंदा रहो।
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किए ना सबके बड़ी अच्छे वाले रिजल्ट जो है ना वो उनको मिले हैं और बड़ी पॉजिटिव से रिस्पॉन्स हमें उनके मिल रहे हैं कि भाई हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर इतनी ज्यादा खूबसूरती हासिल कर चुके हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम कमाल के प्रोडक्ट्स, तो अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं, आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जरा पहले सुनिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके कितने सारे फायदे हैं जो आपको मिलने वाले। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दो प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप

मूंखे भई कहते ही न लॻो त लखा वारो सीन आहे छो त ही जॾहिं ॿ प्रोडक्ट तव्हां इस्तेमालु कंदा न तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त वाकई ही ॿ प्रोडक्ट तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ छो ऐं केतिरा ज़रूरी आहे। त छो जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका हूंदी आहे न अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त खोड़ सारा माण्हू इलाही सारा प्रोडक्ट यूज़ कंदा आहिनि, इलाही सारा प्रोडक्ट जॾहिं तव्हां यूज़ करे वेहंदा आहियो त तॾहिं तव्हांजी स्किन जेका न थोरी ख़राब थी वेंदी आहे, या अगरि तव्हांजी स्किन जे हिसाब वारा प्रोडक्ट तव्हांखे नाहिनि मिलंदा त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हांजी स्किन जेका ख़राब थियण जा चांसिस काफ़ी ज़्यादा हूंदा आहिनि। अगरि तव्हां बि चाहियो था त बाबा असांजी स्किन छो मुफ़्त में ख़राब थिए, असां हेतिरा पैसा भरे करे प्रोडक्ट लॻायूं था ऐं सही प्रोडक्ट अगरि न इस्तेमालु थिए, सही प्रोडक्ट न असांजी स्किन खे मिले त बाबा कहिड़ो फ़ाइदो। अगरि तव्हां बि चाहियो था त तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त थिए, तव्हांजी स्किन ते सुठा प्रोडक्ट यूज़ थियनि, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सभ खां पहिरीं त तव्हांखे नालो अचणु घुर्जे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वेंदा त तव्हांखे आराम सां ही प्रोडक्ट मिली सघे थो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डबी जॾहिं तव्हां ॾिसंदा न त तव्हां अगरि दुकानदार खे चओ था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे, हू तव्हांखे का ॿी क्रीम पकड़ाए छॾे थो, त तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डबी जे मथां हिकु डॉक्टर माई जो फोटो आहे। डॉक्टर माई जो फोटो इन लाइ ॾिनो वियो आहे छो त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे उन्हनि तमामु डॉक्टर्स मिली करे तयारु कयो आहे जेके तव्हांजी स्किन सां रिलेटेड तव्हांजे लाइ प्रोडक्ट तयारु कंदा आहिनि। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी आहे बाबा त ही हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। ऐं हिन जे डबी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे, ॾाढी सुहिणी डॉक्टर माई आहे। सो तव्हां अगरि वञो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस कयो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾिसी करे सही तरीक़े सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जांच करे पोइ तव्हां परचेस कयो, छो त अॼुकल्ह स्कैम ॾाढो थिए पियो मार्केट में, तव्हांखे दुकानदार ॾाढो ठगिन पिया। त तव्हां थोरा अगरि मासूम आहियो, तव्हां ॻोठाणा आहियो, त तव्हांखे थोरी ख़बर हुजे बाबा त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट वठण वञो था। ऐं तव्हां हुनखे ॿुधायो दुकानदार खे, भाई साहब हाणे ॾिस असांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहिड़ी आहे ऐं असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेस करे वेंदासीं। त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में मालूमात जेका बि तव्हांखे ॾींदी आहियां उन ते गौर कंदा कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो त तव्हांखे ख़बर पए बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट आहे। और क्या ही बात है। अच्छा हाँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी सी और आप लोगों को मैं जरा डिटेल बता दी चलूँ। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये जहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुका है जो कि भाई सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बड़ी अच्छी बड़ी कमाल के रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं भाई हमें क्विक सा रिजल्ट मिल जाए और ऐसा रिजल्ट जो कि भाई कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं और उनका ये दावा होता है कि भाई फलां दिनों में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे, तो उनके अंदर बड़े केमिकल हार्श से केमिकल डाले जाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है ना जल्दी में वो मिल तो जाता है, लेकिन उसके बाद आपके चेहरे पर बड़े अच्छे खासे साइड इफेक्ट आपको मिल रहे होते हैं। तो लेकिन आप ये सोचेंगे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपको इतना जल्दी रिजल्ट क्यों दे रही है, तो जरा उसकी जानिब भी आ जाते हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ दो रातों में यूज करने से आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना वो इतने अच्छे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जो है ना इनकी एडिशन की गई है। और वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स के साथ साथ अल्फा अरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये चीजें बीट के गई है। लेकिन जनाब यहाँ पर शो स्टॉपर जो है वो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं, क्योंकि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना इन की जरा बात आप लोगों को बता दी चलूं कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये जो महंगे महंगे फेशियल्स होते हैं ना जो बड़ी हजारों में हो रहे होते हैं आपके चेहरे पर, तो उन महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स एड किए जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट मिल सके। लेकिन यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जनाब 2-in-1 फार्मूला बन चुका है, यानी कि एक नाइट क्रीम तो है लेकिन ये आपको जो रिजल्ट देगी वो बहुत अच्छे खासे जो है ना फेशियल्स कराने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे रिजल्ट मिल सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बाबा मैजिक थी वेंदो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सिर्फ ॿ रातियूं ऐं तव्हां ॾिसंदा तव्हांखे केॾा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिली चुका आहिनि। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कोई बि साइड इफेक्ट न आहे छो त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। ऐं हुन खां अलावा तव्हां सोचींदा हूंदा त बाबा हाणे हिन में माइक्रो बीट्स बि आहिनि, वाइटामिन ई बीट्स बि आहिनि, अल्फा अरबुटीन बि आहे, कोजिक एसिड बि आहे, ग्लूटाथायोन बि आहे, त इहे सभु चीज़ूं ॿुधी करे साउंड्स ईअं महसूस थिए थो त भई ॾाढो महांगो प्रोडक्ट हूंदो, त इहा बि चीज़ तव्हांखे ॿुधाईंदे लाइ ही एतिरो महांगो प्रोडक्ट कोन्हे, को मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहियो आहे। रेग्यूलर जीअं तव्हां पंहिंजा इलाही सारा पैसा नाइट क्रीमनि ते वेस्ट कंदा आहियो न, उन्हनि खां त हज़ार गुना बहितर चवंदा आहिनि न, सस्ता रोए बार बार, महांगा रोए हिकु बार, उहा कार अथव एॾो महांगो न आहे त तव्हांखे मतिलबु तव्हां अफोर्ड ई न करे सघो। मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे ऐं तव्हां वठो बाबा उहे जेके तव्हां बेकार
नाइट क्रीम यूज़ कर पा ना उन्हें हजार गुना बेहतर प्रोडक्ट है बो मेडिकेटेड फार्मूलो है ऑल स्किन टाइप के लिए है तब सब मानू लगाए सो मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल करें खूबसूरती की हिफाजत कर बाबा तवे खूबसूरती के विच में सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो हथ अव सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तुम भी इस्तेमाल करें खूबसूरती के जरा सुणो बाबा सुणो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तुम करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने चाहो था तो तुम डायल करो है 03-12-5907-2297-1250-5970 हि तारिक भाई जो नंबर है तारिक भाई मतलब वेठो हों मोबाइल जैमल कॉल कना ना तो तवी कॉल जी रिसीव थी वेंदी तवा के रिस्पॉन्स मिलो किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराने चाहो था वो तवा के सारी डिटेल्स तक बुधा तक बुधा छो तो किथे किथे मिली रही है या वरी किथे किथे अवेलेबल कराने की नीड है इनका अलावा बो नंबर है अगर मतलब कदम तारिक भाई जो नंबर बंद हो जाए या न रिसीव थे छो तो हर को मू कम कार में थोड़ो बिजी भी हों तो तक हि बो नंबर बुधाया थी इन नंबर से तुम रातों कर वो नंबर है 03-273-8-4309 नंबर से भी रातो कर ये नंबर तवे आसानी के लिए तुम नंबर से रागू था या फलानी जगह से कौन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो तक गाइड कर सा प्राइस वगैरह है तो उन्होंने मालूम वी किथे किथे फेस वॉश अना तीन अवेलेबल ना थे तो तुम वो भी बुधा तो वो तक बुधा छींदा तो किथे किथे फेस वॉश तक मिले तो या वरी किथे किथे अवेलेबल करायो वे ही कुछ गालू अस पूरे प्रोग्राम में बुधाई बाबा तुम एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लाजमी तुम इस्तेमाल करो तक यकीन ढो सुठो रिजल्ट मिली वो न मिले तो तुम मुख्य चेजो उनके अलावा अज जो मां सवाल पुछो है सवाल यो है जनाब तो दुनिया में सब का चाय जड़े मुल्क में पी वी है चाय जो किथे सब का पी वे थी यो तुम मुख्य बुधा था इनके अलावा तुम्हारा फीडबैक्स आज तुम्हारा सुणी सुणी गाल तुम्हारा जो सुणा सुणा फीडबैक उन्होंने शामिल प्रोग्राम क्यों था पर ही जो गानों हलो अचो तो पे गानों बुधूँ था।

सुमित जी क्या बात है, यहाँ पर आपके कमेंट्स ऊपर भी चलते जा रहे हैं, तो जरा मैं जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स जरा रीड करती जाऊँ। यहाँ पर आप सुन रहे हैं जनाब डी स्किन में, डी बारे में एक कांच मत निकालिएगा क्योंकि ये बड़े कमाल का प्रोडक्ट है और बड़े काम का प्रोडक्ट है, तो जरा यूज करके देखिएगा। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, और आपको भी वेलकम कहा जाता है। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी, अच्छा हिदायतुल्लाह आपने टॉपिक का जवाब दिया है, सही हो गया। और चाचा खालिद कहते हैं कैसी है वेगी बैटरी, चाचा को दूल्हा बना दिया आपने, कल रिपीटेड शो सुना था मैंने, अब तो चाचा ना करें, चाचा ना करें। वैसे बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और दर्दी दिल हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। और कहती कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जो वक्त गुजर जाए उसे सोचकर खुद को मत तोड़ो, कभी लोग और कुछ लम्हे सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा साजिद भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है। फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया। और फहीम भाई कहते हैं कि सर खालिद शादी मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो, सदा मुस्कुराते रहो। भाई और कोई नहीं, बस आंटी के साथ दोबारा से जरा चाचा की शादी करा दी हमने, तो ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, बता हमारी आंटी के थोड़ो गुस्से होती है। अच्छा बशीर अहमद बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बशीर भाई आपको वेलकम हो गया। और किशोर भाई लिखते हैं कि आपके सवाल का जवाब, और अगर वाकई ऐसा भी हो सकता है। और इकबाल आशारी कहते हैं विलेज सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से बाजी सिद्रा टॉपिक ओके। ओके जी सब भाइयों को वेलकम हो गया। और साथ साथ जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। गुलाबा जो गुल कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और जी वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, अदी सिडो असा भी अच्छी वैसी तमाम जी प्यारी महफिल में, थैंक यू सोना भा। चाचा कहते असा की सबनी ठगियो वा, डी स्किन क्रीम वारन ठगियो, अच्छा थो ना बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वारा ने ठगी ना, पर दुकानदार

तव्हांखे ठकींदा छो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वञो था वरी दुकानदार तव्हांखे को ॿियो प्रोडक्ट ॾेई छॾे थो त तव्हांखे हिन मामले में ॾिठो वञे त तव्हां स्केम जो हिसो थी वञो था सो तव्हां थोरो बचो हिननि चीजुनि खां ऐं तव्हां इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं सही तरीक़े सां सही तव्हांखे ॻाल्हियूं ख़बर हुजनि की तव्हां वञी ब्यूटी क्रीम ई परचेज अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई में सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं लाजवाब शो थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई और मेलसी से भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो जाइएगा परचेज कीजिएगा रशीद खोसो भाई में हैदराबाद से सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम और जी एस एन अरबाणी आ चुके हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वलैली सलाम अदर ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी कैसी हैं आप और कैसा रहा कल का दिन आपका मुस्कान जी कल मैंने छुट्टी की कल आपने छुट्टी की लेकिन कल इतनी ज्यादा रश थी कि भाई मेरा दिमाग ही घूम गया था चले अच्छा था वैसे आपको रश में मजा नहीं आता था ना तो सही है बहुत बढ़िया हो गया और फरवा आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी जैन अली लिखते हैं कि और फिर मुझे अपना आदि बना के बाद उसे याद आया कि उसे मोहब्बत तो करनी ही नहीं थी अरे वाह क्या बात है और किशोर भाई कहते हैं कि अदा में छोटे मसलों की वजह से शो ना छोड़ आए हाँ पर अफसोस से कहना पड़ रहा है मेरे प्यारे चाचू मुझे छोड़कर चले गए अल्लाह काफी अफसोस हुआ अल्लाह पाक आपको सब्र दे और हाँ मुझे पता चल गया था कि भाई कुछ तो हुआ ही होगा जब आप प्रोग्राम में नहीं आ रहे ओके और बतूल आपका गाना हम लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है और मुजाहिद बोजार कहते हैं हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम बरेरी सदरा जी कैसी हैं आप तबीयत ठीक है आपकी क्या याद करोगी मैं आपको आज कराची से सुन रहा हूँ क्या बात है जी उतान रोहसान असान जिंदगी भर नरसानी तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे ॾिसजो ठीकु आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अगरि फर्ज़ कयो नथी मिले त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो आहे प्रोग्राम में नंबर ते तव्हां राबितो करे वठिजो ऐं जॾहिं ॿुधायो किथे अवेलेबल आहे ऐं किथे अवेलेबल कराइण जी नीड आहे

शो आपको सलाम जी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ है कहते हैं डी स्किन लगायो नाइस आहे वाह सही वाह सही वाह यो तो जेके जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं था बाबा वो यो चवन था तहां भी हणो बाबा तहां भी सोना

है क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो क्या ही बात है, और ऐसे आकर मुझे बता दिया करें कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट क्रीम आप मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। करे थी सी एस कर सुबह छो बाबा हिक बजे आसरे ते वेठा आयो नी एडी सुन थी वही छा भला मुल्क पान वो बाबा पान वो पान वो She wants you to help her with her own one And you want me to tell me that what you've done is okay हुन खां अलावा किशोर भाई खे अदा छा अॼु आऊं न चाहां त तूं सच में मुंहिंजो पुछी हां छा। मूं काफ़ी शो में नोट कयो आहे, ऐं कमेंट ऑफ हुजण जे बावजूद बि शो खे लाइक करे शो लास्ट ताईं ॿुधंदो हुअसि, पर कॾहिं पंहिंजो नालो बि न ॿुधो हुयो। अच्छा भई कॉमेंट्स ऑफ हूंदा हुआ त बसि कंहिंजो बि न नालो खणंदासीं, बाक़ी मूंखे अहसास थींदो आहे त तव्हां हमेशह मूंसां गॾु आहियो, ऐं जॾहिं पंहिंजाइप जो हिकिड़ो अहसास हूंदो आहे न बसि उहो अहसास कंटिन्यू रखण जे करे तव्हांखे चऊं था थैंक यू सो मच। ये तव्हांजो वैसे मोहबतूं आहिनि, वैसे सही कहते मोहबतें एक तरफ़ा से नहीं दोनों तरफ़ा से निभाई जाती हैं, और तव्हां इन में भरपूर हिसो वरितो आहे। बस हाणे हिकिड़ो कमु कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसो, ऐं भाभी खे बि वठी ॾियो, भाभी खे बि चओ बाबा भाभी बि यूज़ करे ॾिसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और दर्दे दिल कहती हैं कि टॉपिक हाँ सही है जी, अबू हनीफ अलबलोची हमें सुन रहे कहते हैं उसकी सारी आदतें एक तरफ मगर हाय वो उसका हंसते हुए चाय पीना, हंसते हुए चाय पीना सही है। अच्छा पहलाज राय हमारे साथ है, लग इस्लाम गोट इस्लाम कोट है शायद, और आप कहते हैं थर्ड पार्कर से, ठीक है ठीक है ठीक है, वेलकम कहते हैं जी नमस्ते के साथ, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोग्राम में बातें होती हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर अभी तक आप नहीं लगा चुके हैं तो जरूर से लगाइएगा, और जरा मालूमात लीजिए आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए या फिर अभी तक नहीं, क्योंकि अवेलेबल कराएंगे तभी तो जाकर परचेज करेंगे, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, परचेज करते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए। जानब जाते ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी। आप सुन रहे हैं

0: It's 2 p.m. It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yulia Granular. मिट्टी जो माँ
6: हाथ पर सांस जाबलू लेकर मैं किराया गया. बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जी चौकी ते हमले की कोशिश नाकाम. नव दहशतगर्द मार वया. सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद दहशतगर्दन किंग वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज ते हमले की कोशिश कई. फोर्सेज की कार्रवाई में ब दहशतगर्द थले ते ही मारिया वया. सत दहशतगर्दन के पीछो कर जहनम भेड़ो कयो वयो. उनखा दहशतगर्दन सिक्योरिटी फोर्सेज की तुर्बत में कार्रवाई में ब दहशतगर्द मार वया. पाक फौज क्रम सेक्टर मां फितना खारदीन मुल्क में दाखिल करने की कोशिश नाकाम. बड़ा वसूल छे फरार थी वया. सिक्योरिटी दरिन मौजूद नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियों ते फायरिंग कई. सिक्योरिटी फोर्स की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के वजन से मजबूत कर.

17 人，男女均拍摄。

मेगा फेशियल्स कराते हैं, सैलून जाते हैं, घंटों बैठते हैं, हजारों पैसे वहां पर देकर आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हल्का फुल्का सा फेशियल करा लिया, हाँ जी रिजल्ट्स मिल गए, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रोसेस 8-10 दिन के बाद दोबारा से वही चीजें फिर रिपीट होती रहती हैं। तो अगर इन तक कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान कर दे, क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ती हुई जिंदगी में ना हमें चाहिए भाई सुकून के दो पल, जो कि हम अपने लिए थोड़ा सा अपने ऊपर लगाएं, अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, थोड़ा सा स्किन केयर करें। और या तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, वो घंटों जाकर सैलून भी लगाए पैसे और घंटों जाकर फेशियल्स वगैरह कराए। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये एक छोटी सी डब्बी जो है ना, ये आप लोगों की जिंदगी को इतना आसान बना देगी, इतना आपकी जिंदगी में जो है ना वो रंगत भर देगी, खुशियां भर देगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई हम पहले कहां थे, क्यों नहीं लगा रहे थे, क्यों नहीं सिद्रा की बात मान रहे थे। खैर अभी भी कोई देर नहीं है, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो है ना खास बातें जरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स एडिशन है जनाब। इससे ये फायदा होगा कि भाई आपको जो है ना ये एक नाइट क्रीम है, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो महंगे महंगे फेशियल अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या पैसे नहीं है, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे और आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। वैसे भी कितना खूबसूरती, हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जल्द की मुनासिब केयर भी बहुत

रहे थे, क्यों नहीं सिदरा के होता है जनाब, क्योंकि अच्छी तरह केयर की जाए तो आपके जल्द के चेहरे की जो ताजगी है, जो निखार है, जो खूबसूरती और जो आपकी स्किन जवान है ना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो थोड़ी सी केयर करें और सही प्रोडक्ट का इंतखाब करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें जिसके अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई हैं जो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट साबित होने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मर्द हज़रात भी लगा सकते हैं, ख़वातीन भी लगा सकती हैं, और इसी के साथ साथ सिर्फ 2 रातों आपको मिल रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो फेस वॉश भी हासिल कीजिएगा। वैसे भी दिन भर की जो मसरूफियात होती है ना, उसके बाद जब आपका चेहरा जो है वो बड़ा खराब हो चुका होता है, डस्ट हो जाती है जमा, पोल्यूशन हो जाता है जमा, और गंदगी जब आप अपने चेहरे पर देखते हैं, कहते हैं कि भाई कोई सोल्यूशन बताएं क्या करें हम, तो डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए येस आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये इतना जबरदस्त, मैं आपको बता, इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है। और हाइलोरोनिक एसिड सीरम अगर हम डिटेल्स के साथ बात करें तो हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी स्किन के अंदर तक जाता है और आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। दिन भर आपकी स्किन जो है वो तरोताजा रहती है, शादाब रहती है और आप ग्लो करते रहते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। और डी स्किन की ब्यूटी क्रीम तो भाई आप जानती हैं कि क्या भाई, ये शो स्टॉपर है हमारे, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाब 25-970 आई बीओ नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर तव्हां डायल कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ऐं उतां वञी आराम सां परचेज करे अचो। छो त जॾहिं तव्हां आराम सां परचेज कंदा न, पोइ तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी वेंदी ऐं तव्हां चवंदा बस फलाणे जनरल स्टोर ते वेंदासीं, उतां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी ईंदासीं, का मसले जी ॻाल्हि ई कोन्हे, का कोन असां खे शहर वञणो पवंदो या असांखे इलाही सारे दुकाननि जा धिका खाइणा पवंदा ऐं दुकानदार अजीब हिकिड़ो जेको आहे न सीन क्रिएट कंदा आहिनि, भाजी ही प्रोडक्ट वठी वञे, भाऊ ही प्रोडक्ट वठी वञे, ऐं जॾहिं तव्हांखे ख़बर न हूंदी आहे त पोइ तव्हां ज़ाहिर आहे त कोई ॿियो ही प्रोडक्ट वठी ईंदा, पोइ तव्हांखे ख़बर न हूंदी त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे रहिया आहियो, उहो प्रोडक्ट वरी अलाए कहिड़ो प्रोडक्ट हूंदो। सो तव्हां बाबा इन्हनि चीज़ुनि खां बचो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे जेको आहे फोटू अथव ॾाढी सुहिणी बि आहे भई माई आर डॉक्टर, सो तव्हां ॾिसंदा त उनजे मथां जेको आहे न 2 डेज़ फार्मूलो बि हूंदो त 2 ॾींहनि जे अंदरि जेको आहे तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी ऐं डॉक्टर माई जो फोटू अथसि। इहे निशानू जॾहिं तव्हां ॾिसो त तव्हां यकीन करे वञो बाबा इहा अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं वठी अचो ऐं सोणा सोणा थी वञो। ऐं उनखां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां राजे टाइम लॻाए सघो था, हीअ नाइट क्रीम आहे, आहे नाइट क्रीम पर 2-in-1 फार्मूला, यानी कि तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी फेशियल वारा, सो लॻायो ऐं सोणा सोणा थी वञो। अच्छा, मां अव्हां खां सवाल पुछो आहे त दुनिया में, हांजी सॼी दुनिया में सभ खां वधीक चांहि जेका आहे उहा कहिड़े मुल्क में पी वेंदी आहे, इन जो तव्हां मूंखे जवाबु ॿुधायो पिया, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि, बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स मूंखे मिलंदा वञनि पिया। ऐं तव्हां काइंडली पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो, लाइक ऐं शेयर करणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे, सो पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जे इलाही सारे माण्हुनि खे ॿुधाए सघूं त बाबा तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे पंहिंजी ख़ूबसूरती जा प्रॉब्लम जेके न उहे ख़ूबसूरतीअ जे अॻियां जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि उहे सभु दूरि कयो ऐं ख़ूबसूरतीअ ऐं तव्हांजे विच में सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ासिलो हुजे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं सोणा थी वञो। अच्छा, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि, बिल्कुलु शामिल प्रोग्राम रखूं था ऐं गाना बि आहिनि जेके असां बिल्कुलु ॿुधंदा वेंदासीं, पर हिते हिकिड़ो कमु था कयूं, हीउ वारो गानो हलायूं था सभ खां पहिरीं। अच्छा, ही मुमताज़ मुलाई जी आवाज़ में गानो आहे ऐं अधे हिकिड़ी फरमाइश कई सो ही गानो ॿुधंदासीं। अच्छा, असांखे आयशा ॿुधे पई, आयशा मेमण असांजी प्यारी हिकिड़ी लिसनर आहे, आयशा मेमण असांखे ॿुधे पई बाबा ठेड़ी मां, ऐं आयशा जेको आहे असांजी ॾाढी सुठी हिकिड़ी लिसनर आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि कंदी आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदी आहे ऐं ॾाढी माशाल्लाह सुहिणी थी पई आहे, मां करणु चाहियो त तव्हां बि असांजी प्यारी आयशा जी आहे। सो आयशा, थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु आहियो।

अपने इसी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और जाहिर ठीक वहाँ बताएं कैसे चौथा सिंध में अल्लाह जाए बुधा का टैलेंट आए बाबा कह तो चेना है। और चाचा कहते हैं कि सिद्रा मुस्कान बेटा कराची में गर्मी बहुत है, मैं कल बाहर लगा के गया था डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो पसीना आया थोड़ी थोड़ा ही कार में भी। अरे भाई दिन में नहीं लगाए ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, रात को लगा के सो जाया करें चाचा।

मां ठीक आहियां अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? हबीबुल्ला थेबू केॾे सॉन्ग ॿुधायो शमणी मिराली जो, हुसन में तूं ज़ोर आहे माण्हू तूं मोर आहे। अलाह ॿुधायां थी ॿुधायां झंडो मरी खां मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम मंज़ूर अली ख़ास केली, ग़ुलाम ख़ान मोहम्मद ख़ास केली, हाजी जान मोहम्मद ख़ास केली, क़ुर्बान ख़ास केली, भान जो मोहबतूं बाबा तव्हांखे चवंदा भली करी आया, शहर गुलाब लगारी ॻोठ बाशम ख़ान रिंद से, शायर गाज़ी ख़ान रिंद, रिज़वान अली रिंद, फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद, छोटी कुनेन ज़हरा आपका शो सुन रहे हैं। शो ज़बरदस्त है, अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को और सुनने वालों को खुश रखे, आमीन सुम आमीन जवाब है। ओके ओठ गुलाब लगारी खान, साबिर लगारी, सुल्तान लगारी, रिजवान लगारी, वालेकुम अस्सलाम, शो नाइस है, प्लीज प्ले समीना गुडी। मां कोशिश कयां थी तव्हांजो पसंद जो फरमाइशूं सभु हलायूं, पर प्रोग्राम नंढड़ो आहे, प्रोग्राम इजाज़त न आहे ॾींदो। अच्छा गोठ मामन तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू कहते हैं, आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको, वालेकुम अस्सलाम आपको। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे है? अच्छा हमारे साथ ही भाईजान कहते हैं आके इंडिया है, और आतिफ का गाना, ये जो आपने गाना बोला है ना, ये सरासरटी सीरीज का गाना है, तो हम इंडियन गाना बोलते, मेरे को लगता है कोई क्राइम के लिए बोल दिया है आपने, तो ये जरा इंडियन गाने नहीं लगा सकते हम। और बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे जयपाल भाई, कहते हैं कि गुलालाक कातिल को बहादुर और मालदार को समझते हैं, बिल्कुल भाऊ। असां खे नख पई लीलो ईअं न असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे, ऐं बिल्कुल बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे खपंदी जॾहिं तव्हां वेंदो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां मालूमात वठो, मिले थी कोन मिले थी, अवेलेबल करायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो बाबा, पोइ सफ़ा ई हर को तव्हांजी तारीफ़ कंदो, हर को तव्हां ते आशिक थी पवंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, सुहिणा सुहिणा थी वञो। टाइम थियो बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, वापसी जल्दी मोटी अचां थी, गाॾी न वञो, हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटा थी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemmé Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Naya, Pakistan Gold Based Financing.
5: दुनिया के ज्यादा खत्म हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक मती से, हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल। हारी पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

और ये गाना आपको डेडिकेट जाता है जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद कनो बाबा अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो था ये गानों तुम जिलाए थव एंजॉय कर।

चाहिए। तो आप डी स्किन ब्यूटिक मिलकर ये फार्मूला तैयार किया गया है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मेडिकेटेड फार्मूला है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हर सकते हैं। और सुनाओ, पाकिस्तान माइक्रोबीट्स शामिल है। तो डी

कीजिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और ऐसे कहते हैं वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो पूछ नहीं आई जो वहाँ एंड डी स्किन आए बुआ जी भले कोई। अच्छा चे तो भले कोई असानो चेहरो भेटाए दिसे, वाह वाह वाह वाह जी शायरी, वाह जी शायरी हुई, सफा मेला लूट लिया आपने तो। और इन खां अलावा ही असो प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक आहे, आई बी हिकड़ी गाल तां के बुधाई नी अलाम त अलाई छा हो।

कर बस कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कौन पिया कियो तो बाबा करे वेठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल ताने खूबसूरती जला डाडो फायदेमंद आहे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाके नथी मिले तो तमाके जेको नंबर बुधायन वे प्रोग्राम में उनते जरूर रातो करे वेठना कयो जे तमाके करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल थी वने ठीका अच्छा भाई हमें 5 साल के बाद सुन रहे हैं जी आपको वेलकम कहते हैं वापसी आने पर अच्छा दर्दी दिल कहती है कि सब मासूम हैं पर मैं कुछ ज्यादा ही मासूम हूँ निदड़ी को शायद आप भूल रही हैं वो और ज्यादा मासूम है अच्छा हजार भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है अच्छा शमन अली हमारे साथ ही कहते हेलो जी हेलो जी शमन अली भाई कहते हैं कि तुमको चाहने की वजह कुछ भी नहीं इश्क की फितरत है बेवजह होना अली अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अरशद मरी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम

तालिम मेरी भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, वेलकम वेलकम। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, तो आप लोगों से इजाजत लेंगे जनाब। और आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में अगर आप लोगों को जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो लाजमी करके देखिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम एॾी भली क्रीम आखिर छो आहे। तव्हांजे चेहरे जा सभु प्रॉब्लम दूर थी वेंदा, तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी, तव्हां सफ़ाई चमकंदा वधंदा, माण्हू तव्हां खां पुछंदा बाबा छा इहो राज आई तव्हांजे खूबसूरती जो, ऐं तव्हां ॿुधायो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे हर जॻह ते आराम सां मिली वेंदी, ऐं हुन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾोगॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करणो आहे। डी स्किन जो फेस वॉश बि लॻायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻायो, ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। फसली कहती आप भी वॉश ख़ुश रहे। और इसी के साथ साथ लेते हैं जी इजाजत, बहर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। बस स्टार्टिंग में पता चला कि आपने पूरा थैंक यू वेरी मच। और

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's brought to you by
3: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: दहशतगर्द छे ते मारिया वया सत दहशतगर्द के पीछो करे जनम भेड़ो कयो वयो उन खा अग सिक्योरिटी फोर्स जी तुर्बत में कार्रवाई में ब दहशतगर्द मारजी वया। पाक फौज कुरम सेक्टर मां फितना खारजन मुल्क में दाखिल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। अफगान तालिबान पोस्टू छॾे फरार थी वया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकिन ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन के भजण ते मजबूर कयो। लाड़काने में हथियारबंदन की कार ते फायरिंग बिन भारन सूदो चार जना कतल। लाहौरी बाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार ते फायरिंग करे जमीनी तकरार तां चइन जणन के कतल कयो। पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावर आयो ऐं संदस भाव मंसूर खोखर अली शेर खोखर ऐं कार ड्राइवर मारजी वया। हिकु औरत जख़्मी थी आहे। वारसन जो चवण आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हू ज़मीनी तकरार तां चइन जणन खे कतल कयो आहे। SSP लाड़काने जो चवण आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वाके जो नोटिस IG सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
8: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 4 PM. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हड्डियां जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
8: लाड़काणे में हथियारबंदन की कार से फायरिंग में भारण सूदो चार जना कतल, लाहौरी काड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे जमीनी तकरार तां चैन जणन के कतल कयो। पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावर आयो ऐं संदस भाउ मंसूर कोकर, अली शेर कोकर ऐं कार ड्राइवर मारजी विया। हिक औरत जख्मी थी आहे। वारसन जो चवण आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे कतल कयो आहे। SSP लाड़काणो जो चवण आहे त कई धुरियूं पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वाके जो नोटिस आहे जी सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो।

पाकिस्तान सऊदी अरब से खुदमुख्तियार सलामती मुकदस संदन के तहफुज लाए गड है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के कौमी डी के मौके से हुसैन के मके से हमले की मज़म्मत क्यों था। हुरमिन शरीफ की सलामती के को भी खतरो समूरी दुनिया के मुसलमान के जज्बन के छियो रसाए तो। वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफीर नेडी बेकर की मुलाकात। इलाकई सिक्योरिटी के मामलों से पाकिस्तान के अमन कोशिशों बाबत गालियों थी। पाक अमेरिका लागापन के हथी डेण सीड़पकारी के मौकों के इम्कान से ख्याल की डेवत कई वही। मोहसिन नकवी तो दुनिया ए दहशतगर्दी बीच में पाकिस्तान मजबूत भित बनल है। अमेरिकी सफीर नेडी पारा बेकर दहशतगर्दी खिलाफ पाकिस्तान के अखाण कई। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तालीम ट्रांसपोर्ट सेहत बहराड़ी के तरक्की ए डिजिटल मनसूबन से ख्याल की डेवट कई वही। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह हर बार के महफूज जदीद मयारी तालीमी सहूलतू फराम करण जो अज़म है। सिंध हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक से वहवारी मजबूत बनाईंदी। हमलन में जहरीले पानी की छोड़ सरकारी अफसर की मुजुर्मानी गफलत करार। सिंध हाईकोर्ट के आइनी बेंच गोठाणन पारा साल 2014 में दाखिल करायल दरख्वास्त महफूज कल फैसलो बुधायो। फौरी तौर कब्जा खत्म कराए हमलन में भीर थर के जबलन का शामिल साफ पानी जो रुख मोड़ने वाले मामले जो जायजे वठण जो हुक्म दिनो। सिंध अदालत हमलंड में जहरीले पानी की छोड़ के सरकारी अफसर दिनों। हमलंड मिठे पानी नेकाल जरिए बोर्ड के इंतजाम जो निजाम है।

वीर रज़ा केस जे अदालती कमीशन जो गुज़िरियल ॾींहं वारी कार्रवाई जो लिखत हुकुमनामो जारी। सेक्रेटरी सिहत सिंध SSP समीउल्लाह सुंगरो ऐं POC कोआर्डीनेटर शहरयार मेमण खे नोटिस जारी। DSP सिराज अहमद लाशारी ऐं CPSC जे काशिफ इफ्तिखार खे 28 सेप्टेम्बर ते पेश थियण जो हुकुम। अदालती कमीशन बार बार ख़ातिरियूं कराइण बावजूद समूरो रिकॉर्ड फराहम न करण ते अफ़सोस जो इज़हार कयो।

चंडो मोहम्मद खान में घरू तकरार सां भाव सां भाव कतल। रेलवे फाटक भरसां ॿारनि में घरू तकरार सां जेड़ो थियो। फायरिंग में रफीक मंगसी मारिजी वियो। मंजूर मंगसी जख़्मी थी पियो। मक़तूल जो मर ऐं ज़ख़्मी खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। रुस्तम भरसां महर जतोई धुरिन में तकरार सां ॿ ॼणा मारिजी विया। फायरिंग में हज़ारो जतोई ऐं मुर्तज़ा महर मारिजी विया। वाजिद जतोई ज़ख़्मी, लाश इस्पताल मुंतकिल। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन में अलोदा मस्जिद वेझो फायरिंग, हिकु ॼणो मारिजी वियो। मक़तूल जी सुञाणप टीह वरनि जे मोहम्मद शाह तौर थी आहे। लाश इस्पताल मुंतकिल।

कराची में पिपरी पंपिंग स्टेशन ते बिजली जो ब्रेक डाउन शहर के पानी की फराहमी मुअत्तल थी वही। वाटर कॉर्पोरेशन जो चवण है तो वरी ब्रेक डाउन सबब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुकम्मल तौर से बंद है। बिजली बहाल थी पानी की फराहमी मामूल मूजिब बहाल कई वी।

कराची इस्लामाबाद में डॉक्टर संदस ज़ाल ऐं टिन ॿारनि जा लाश हथ अचण वारे वाक़े में मुबैना गफ़लत ज़रियन मौजूद पंज घर भातियुनि जे लाश जा पाणी जुदा लेबॉरेटरी में जमा न थी सघिया, ज़ाया थियण जो ख़दशो आहे। ज़रियन मौजूद लेबॉरेटरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट खां सवाइ जुदा वठण खां इनकार करे छॾियो। सिविल अस्पताल इंतिज़ामिया लाशनि जा जुदा कराची यूनिवर्सिटी लेबॉरेटरी मोकिलण लाइ चयो हो। मेडिकल डिपार्टमेंट जो चवण आहे त लाशनि जी पोस्टमार्टम में वक़्तु घुरियल आहे।

रतो देरो भरसां बि मासूम ॿारणियूं मच्छी जे तलाउ में ॿुॾी फोत वियूं आहिनि। घोट वॾा भूषण में 5 वरियनि जी नूरुल हुदा ऐं 4 वरियनि जी अमीरा भूषण रांदि खेॾण दौरान तलाउ में किरी ॿुॾी फोत थी वियूं आहिनि। नओं दंबालो जे कासिमलुन कॉलोनी में घर मां पे पीपसन जो लाश थायो आहे। पुलिस जो चवण आहे त 65 वरियनि जे दिलबर राजपूत जो केतिरा ई ॾींहं पुराणो लाश मिलियो आहे। वधीक जांच कई पई वञे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क।

0: 진짜 좋아 봐. 부탁다라고.
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 जो आवाज बदलदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

वफाकी वज़ीर अताला तारण चयो आहे त माण्हुनि खे कूड़े बयाने पोयां लॻाए ज़हन साज़ी कई वई। जॾहिं मईशत तरक़ी करण लॻंदी आहे त ही धरणा एहतजाज करण शुरू कंदा आहिनि। पीटीआई केपी में बि को कम न कयो आहे। पीटीआई 13 सालनि में केपी खे तबाह करे छॾियो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असां चाहियूं था त मार्च पुरमन थिए। हुकूमती टोलो प्रोपेगेंडा थो करे असां इदारनि ते हमला कंदासीं। असां गालियुनि जे हक़ में आहियूं। ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हाइण घुर्जे पर ॻाल्हियूं न पयूं थियनि। सियासी मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए निकरंदो। पीटीआई क़यादत महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं अलामा राजा नासिर अब्बास ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहिनि।

0: सड़कण में थरबंदन की कार से फायरिंग, बिन फायरिंग सूदो चार जना कतल। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे जमीनी तकरार सां चइन जणन के कतल कयो। पुलिस मौजिब फायरिंग में वरायो संदस भाव मंसूर खोखर, अली शेर खोखर ए कार ड्राइवर गुलाम मोहिब मंगड़े जो मारजी व्या। एक औरत जख्मी, वारिसन जो चवण है पेंची बिरादरी के मान जमीनी तकरार सां चइन जणन के कतल कयो है। एस एस पी लाड़काणो जो चवण है बई धुरियूं पेंची बिरादरी के मानून के कतल में मुलविस रही आहिन। वडे वजीर मुआद अली शाह पारां वाके जो नोटिस आज जी सिंध का रिपोर्ट तलब, जवाबदार गिरफ्तार करण जो हुकुम। पाक फौज अफगान तालिबान रिजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छॾिया। अफगान तालिबान रिजीम तरफा 8 ड्रोन पाकिस्तान के फिजाई हदन में दाखिल किया। सिक्योरिटी जरिये मूजिब पाक फौज एयर डिफेंस सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान का आयल 8 ड्रोन के किराए तबाह कर छिया। अफगान तालिबान अवामी हंधन के निशानों बढ़ने वाली भुस्तलाणी कोशिश कई। 4 ड्रोन सुरखम बार्डर भरसा ए 4 ड्रोन कुहाट भरसा जाबरू इलाकन में किराया व्या। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी से हमले की कोशिश नाकाम, 9 दहशतगर्द मारजी व्या। सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिब दहशतगर्दन किंग वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज से हमले की कोशिश कई। फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द थड़े से मारजी व्या। 7 दहशतगर्दन के पीछो कर जनम बेड़ो किया वो। उन अग सिक्योरिटी फोर्सेज की तुरबत में कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारजी व्या। पाक फौज कुर्रम सेक्टर मां फितनतुल खारिजीन मुल्क में दाखिल थियण की कोशिश नाकाम बणाए छदी। अफगान तालिबान पोस्टू छदे फरार थी व्या। सिक्योरिटी जरिये मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के भजन से मजबूर कर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुदंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सिंध जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जी एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: ये ते पहुंचाए छियो है पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो है त असि चाहियूं था त मार्च बि थे ऐं उहो पुरमुन बि हुजे। हिक हुकूमती जथो प्रोपेगेंडा करे रहियो आहे त असां हुकूमत इदारनि ते हमिलो करण वञी रहिया आहियूं। जेको हुकूमती टोलो बयानियो ठाहे रहियो आहे हुन जो बंदोबस्त करणो पवंदो। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त असांखे ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हि करणी आहे, मसलनि जो सियासी हल ॻोल्हणो पवंदो। कुझु माण्हू सियासी मसलनि जो सियासी हल नथा चाहिनि। लेवी जो पेट्रोलियम कीमत सां को वास्तो न आहे, उन जी खात्मे लाइ ॿिनि महीननि खां जदोजहद जारी आहे। जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पेट्रोल सस्तो न थियो त मैशत तबाह थी वेंदी। लेवी जी खात्मे लाइ हुकूमत ॾिनल तजवीज़ुनि ते अञा ताईं को जवाब न आहे ॾिनो। लाड़काणे में कार मथां हथियारबंदनि जी फायरिंग, ॿिनि भाइरनि समेत चार ॼणा क़तल। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि कार ते फायरिंग करे ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो। पुलिस मौजे फायरिंग में अलाह वरायो ऐं संदसि भाउ मनसूर खोखर, अलीशेर खोखर ऐं कार ड्राइवर ग़ुलाम मोहिब मङणे जो मारिजी विया। हिक औरत ज़ख़्मी। वारसनि जो चवणु आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो। SSP लाड़काणे जो चवणु आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजे बिरादरीअ जे माण्हुनि जे क़तल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां वाक़िए जो नोटिस IG सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम।

पाक फौज कुरम सेक्टर में फितना खारजन मुल्क में दाखिल थियण की कोशिश नाकाम बढ़ाए छी। अफगान तालिबान पोस्टू छदे फरार थी व्या। सिक्योरिटी जरिए मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकिन फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सिस की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के भजन से मजबूर किया।

0: न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात पोले जी खात्मे माओ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जी मुकमल खात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरजायो। बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जी पोलियो खात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हरी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो
1: है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 90.4 उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल
1: की बन
0: जीए एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: तस्वीरों भी दिखा रही हूँ। मसूद पशेकियान जो चवण हो तो ट्रंप असा दहशतगर्द करार दिनों असा तो पान दहशतगर्दी जो निशानो बणिया आयू असा दहशतगर्द न पर जारियत खिलाफ पैंजो दिफा कर रहा आयू। सुप्रीम लीडर के बिना कें जवाज के शहीद कयो वियो वाजे कयो तो एटमी हथियार न ठाया वेंदा पर को फायदो न थियो। ईरान के एटम बम न पर एटमी तवानाई की जरूरत है। एटमी हथियार तो इसराइल वट भी आन पाबंदी ईरान मथा छो पैंजे दिफा लाए कें इजाजत की जरूरत न है। ईरानी सदर के खिताब दौरान अमरीकी नुमाइंदो वॉकआउट कर रवानो थी वो।
4: जडे मईशत तरक्की कंदी आहे त ही धरना एहतजाज शुरू करे सघंदा आहिनि। केपी हुकूमत इस्लामाबाद ते चढ़ाई तबाही ऐं बर्बादी जी सियासत करे रही आहे। सुध समाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताला तार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अताला तार चयो आहे त कुहाट ऐं हंगू में सूरतयाल ख़राब आहे ऐं केपी हुकूमत जा ज़िमेवार वरी टिक टॉक ठहिण में रुधल आहिनि। वफ़ाक़ खां पैसा न मिलण जो तासुर बि ग़लति आहे। केपी हुकूमत 13 सालनि में को बि कम नाहे कयो ऐं सूबे खे तबाही कंदे ते पहुचाए छॾियो आहे।
3: पीटीआई चेयरमैन बेरेस्ट गोहर चयो आहे त असीं चाहियूं था त मार्च बि थे ऐं उहो पुरमुन बि हुजे। हिकु हुकूमती जथो प्रोपेगेंडा करे रहियो आहे त असां हुकूमती इदारनि ते हमिलो करण वञी रहिया आहियूं। जेको हुकूमती टोलो बयानियो ठाहे रहियो आहे हुन जो बंदोबस्त करणो पवंदो। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बेरेस्ट गोहर चयो त असांखे ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हि करणी आहे। मसलनि जो सियासी हल ॻोल्हणो पवंदो। कुझु माण्हू सियासी मसलनि जो सियासी हल नथा चाहिनि।

जे 27 सितंबर वाले इम्कानी मार्च के मुंह डेण जी तैयारियों पंजाब हुकूमत समूरे सूबे में कलम 144 लागू कर छो रेंजर्स जो खिदमतू भी तलब पंजाब की घरू वजारत मौजिब रावलपिंडी अटक जहलम ए मियांवाली में रेंजर्स मुकर थी पंजाब हुकूमत पारा 27 सितंबर से मुख्तलिफ इलाक में मोबाइल फोन ए इंटरनेट सर्विस मुअतल करने की दरख्वास्त लाहौर कास्टर वे जरिए माल बरदार गाड़ियों के इस्लामाबाद में दाखिला से भी पाबंदी पेशावर मोटरवे अगवाट बंद कर

0: लेवीअ जो पेट्रोलियम क़ीमत सां को वास्तो न आहे, हुन जी ख़ात्मे लाइ ॿिनि महीननि खां जदोजहद जारी आहे। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम रहमान इस्लामाबाद कंदे चयो त पेट्रोल सस्तो न थियो त मैशत तबाह थी वेंदी। लेवीअ जे ख़ात्मे लाइ हुकूमत ॾिनल तजवीज़ुनि ते अञा ताईं को जवाब न आहे ॾिनो।
1: लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद वक्का दिफाई माहिदे तहत पहिरियों सेक्रेटरी जनरल मुक़रर। परडे तर्जमान चयो आहे त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद वक्का माहिदे तहत क़ाइम इतिहाद जे जनरल सेक्रेटरी जी क़यादत कंदो। वक्का माहिदे तहत इतिहाद जो जनरल सेक्रेटरी रियास में क़ाइम कयो पियो वञे।
0: पाक फौज अफगान तालिबान रिजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छॾिया। अफगान तालिबान रिजीम तरफ़ां 8 ड्रोन पाकिस्तान जी फिज़ाई हदुनि में दाख़िल थिया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिब पाक फौज जे एयर डिफेंस सिस्टम ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में अफ़गानिस्तान खां आयल 8 ड्रोन खे किराए तबाह करे छॾियो। अफ़गान तालिबान अवामी हंधनि खे निशानो बणाइण वारी बुज़दिलाणी कोशिश कई। कुरम सेक्टर मां बि फितनल ख़ारिजनि जे मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम। पाक फौज जी जवाबी कार्रवाई बाद अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया।
1: बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जी चौकी ते हमले जी कोशिश नाकाम। नव दहशतगर्द मारजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब दहशतगर्दनि किंग वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज ते हमले जी कोशिश कई। फोर्सेज जी कार्रवाई में ब दहशतगर्द थडे ते ई मारजी विया। 7 दहशतगर्दनि खे पीछो करे जनम भेड़ो कयो वियो।
0: न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाक़ात। पोलियो जे ख़ात्मे, ॿाहु ऐं मार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल ख़ात्मे लाइ जो अज़म वरचायो। बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी बि वाखाण कई।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार पारां वालारियल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि जी मुसम्मत। इसहाक़दार चयो त वालारियल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी तय पई। आलमी बिरादरी कश्मीरियुनि सां कयल वायदा पूरा करे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद ग्रुप ते ॻणती आहे। अफ़ग़ान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण न घुर्जे।
0: जीए सिंध रहबर कमेटी 15 अक्टूबर ते लाड़काणे ऐं 8 नवम्बर ते वरी कराचीअ में वहदत सिंध मार्च जो हैदराबाद में रहबर कमेटी जे सरबराह रियाज़ अदारत हेठि अहम इजलास में फ़ैसिला। अॻवाननि जो चवणो हो सिंध जे ज़मीननि, सामूंडी पटी, तेल, गैस, कोयले, मैदनियात ऐं सिंधु दरिया ते कब्ज़ो करण चाहिनि थियूं, जेको सिंधी क़ौम कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदी। सिंध में नस्ली ऐं लसानी तज़ाद पैदा करण वारनि कोशिशुनि खे नाकाम बणायो वेंदो।
1: सिंध असेंबली जी पॉलिटिक जे सीओ बदिरां ॿिनि आफ़िसरनि जी शिरकत। सवालनि जा तसली बख़्श जवाब न ॾियण ते ॿिन्ही अमलदारनि खे इजलास मां ॿाहिरि कढियो वियो। कमेटी चेयरमैन पारां नोटिस जज ग़ुलाम क़ादिर चांडियो खे इलेक्ट्रिक जे नुमाइंदनि वक़्तु ज़ाया कयो। मामिलो इस्तेकाक कमेटी खे वणियो वञे। सादिया जावेद जो चवण आहे त के इलेक्ट्रिक पारां जेके अमलदार आया उन्हनि वटि सवालनि जो को जवाब ई न हो।

0: तो 13 लाख रुपये ना तोर पायतन जे चाचे जे घर ते फायरिंग नीगरी कतल जाल मुड़ जख्मी घोट अली मोहम्मद बिरोही में फायरिंग सबब 12 वरियन जे अजीज वक्त बिरोही मारजी वही गोलियों लगन सबब निगरी जो पी अयूब बिरोही अमर आयशा बिरोही जख्मी थी पा पुलिस पहुंची जख्मियों के तालुक अस्पताल पहुंचाय हालत नाजुक होजन सबब लाटकाने मुंतकिल मकतूल निगरी जे चाचे निजामुद्दीन बिरोही जो चवण है त मुंचन भाइटन अब्दुल खालिक शबीर बिरोही भाव अयूब के घर ते हमलो कयो नौशर फरोज भरसा सोलंगी बिरादरी की बिन धुरियन में जेड़े दौरान एक जनो कतल भरण वाले इलाके में जेड़े दौरान गोलियों लगन सबब अब्दुल रशीद सोलंगी मारजी वो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा। केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चाहवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
3: शहीद आयतुल्लाह खामनाई ए मनाब स्कूल के शहीद बारन जो तस्वीरों भी डेखारियूं। मसूद पशिकान जो चवण हो तो ट्रंप असा के दहशतगर्द करार दिनों। असा तो पान दहशतगर्दी जो निशानो बणिया आयूं। असा दहशतगर्द न पर जारियत खिलाफ पैंजो दिफा करे रहा आयूं। सुप्रीम लीडर के बिना कहें जवाज के शहीद किया वो। वाजे कयो तो एटमी हथियार न ठाया वेंदा पर को फायदो न थियो। ईरान के एटम बम न पर एटमी तवानाई की जरूरत है। एटमी हथियार तो इसराइल वट भी आन पोए पाबंदियों ईरान मथा छो। पैंजे वतन की दिफा लाए कें इजाजत की का जरूरत न है। ईरानी सदर के खिताब दौरान अमरीकी नुमाइंदो वॉकआउट कर वो।
4: ईरानी परडे वजारत के तर्जुमान इस्माइल वकाई है ता कतरी चाकड़ी जरिए अमरीकी अफद से राबो थ ईरान पैंजो मौकफ ए शर्त अमरीका ताई पहुंचाया। ईरानी शर्तन में सभी माजन से जंग सामूंडी नाकाबंदी इकतसादी जंग जो खात्मो मुंजमद ईरानी असासन की बहाली शामिल आन। अमरीका के ईरानी अफद लाए खास हिफाजती कदम की का भी दरख्वास्त ना कई वही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर दौरान ईरानी अफद कडल कौमन के इजलास में वॉकआउट कर
3: जद मैशियत तरक्की कन्दी है तो ही धरना एहतजाज शुरू कर छींदा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद से चढ़ाई तबाही ए बर्बादी की सियासत कर रही है। सुदसमा वफाकी वजीर अतातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अतातार तो कुहाट ए हंगू में सूरतहाल खराब है। केपी हुकूमत जहा जिम्मेवार वरी टिकटॉक ठाण में रुथल आन। वफाक का पैसा न मिलने तासुर भी गलत है। केपी हुकूमत 13 साल में को भी कम ना कर सूबे के तबाही कंदी से पहुंचाई छो है।
4: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चाहिए असि चाहूं था ता मार्च से भी थे इो पुरमन भी हुए। एक हुकूमती जत्थो प्रोपेगेंडा कर रो है तो अस हुकूमत इदारन ते हमलो कर वही रहा जो टोलो बयान ठाई रो है उनको बंदोबस्त करणो पवो। इस्लामाबाद में मीडिया से गलंदे बैरिस्टर गोहर असके खबर आ है कैंसा गाल करनी है मसलन जो सियासी हल घुरण पवो। कुछ मानू सियासी मसलन जो सियासी हल नथा चाहन।
3: पीटीआई की 27 सेप्टेम्बर वे इम्कानी मार्च के मुंह डेण जो तैयारियों जारी। पंजाब हुकूमत समूरी सूबे में कलम 144 लागू कर छो। रेंजर्स जो भी खिदमतू तलब। पंजाब की घरू वजारत मूजिब रावलपिंडी अटक जहलम ए मियांवाली में रेंजर्स मुकर्र थी। पंजाब हुकूमत पारा 27 सेप्टेम्बर से मुख्तलिफ इलाक में मोबाइल फोन ए इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दरख्वास्त। लाहौर का इस्लामाबाद मोटरवे जरिए माल बरदार गाड़ियों की इस्लामाबाद में दाखिला से भी पाबंदी लागू। पिशावर मोटरवे अगवाट बंद कर वो।
4: नेवी जो पेट्रोलियम कीमत सा को वास्तो ना है। इन खात्मे लाए जदोजहद जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्दे है ता पेट्रोल सस्तो न थो तो मईशत तबाह थी वेंदी। लेवी के खात्मे लाए हुकूमत दिनल तजवीजन से अया तई को जवाब ना दिनो।
3: लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद मक्का दिफा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: ढोला बिछड़ गया।

तूं अची अची अची न अची जानम, तूं अची अची अची न अची जानम, तुंहिंजे इंतज़ार मां बाहूं कढूं त काफ़िर। तूं अची अची अची न अची जानम, तुंहिंजे इंतज़ार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं, सच ऐं ख़ुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे। सच ऐं ख़ुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे, इन ई एतबार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं, इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं, चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं।

दोस्तों, एक रोमांटिक प्यार भरियो मोहब्बत जो एहसास, खूबसूरत गीत अचो तो गजी एंजॉय क्यों, हैने दिल ते ना वो तुझो बेजो लिखा तो काफिर।